चोर चिट्टर बैठे हैं भाई, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत अच्छे लोग बैठे हैं, कहीं और। चोर चिट्टर बैठे

कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कहाँ बैठे हैं? जोर से ये मेरे से बात करो भाई, दिस इज नॉट, ये सॉन्ग नहीं है, ये कुछ गाना नहीं है, ये अपना स्टाइल है, अपना ही सही है। और ये बीच बीच में जो है वो करता हूँ, ये क्या है कि दो टाइप का म्यूजिक होता है, जैसे कोई म्यूजिक जो दारू में जैसे लोग डूब जाते हैं वैसे म्यूजिक में डूब जाते हैं, सो दिस इज नॉट म्यूजिक कि वो डुबाने वाला, ये डूबे हुए लोगों को बाहर निकालने वाला। इसके लिए वो म्यूजिक तो बहुत है ना भाई, लता भाई का मैंने बोला बहुत अच्छा म्यूजिक है, अरे गाओ, वो आवाज अच्छा है, ठीक है, अच्छा है, तो वो सुनो, लेकिन अभी दिस इज हमारे साथ में बात करो, डूबो मत। इसके लिए बोलता है मतलब है भाई, लाइव पे आ जाओ। चोर चिट्टर चल।